महाराज जिया ने पकड़ नो रोक दिता। आखना कीता के ना पकड़ो, खलोता रहन दो। महाराज जिया ने पवित्र हथां दे नाल मोढ़ियां तो पकड़ करके भार नू जोखिया है। मुख तो बचन आखे, पुत्री भानी तेरा ए पुत्र गुरु अर्जुन देव बड़ा बली बड़ा भारी गुरु होवेगा। बहुती गुरबाणी उचारण करेगा, दोहेता बाणी का बोहेता। गुरबाणी का जहाज होवेगा, जिस नाम रूपी जहाज उपर चढ़ करके सैकड़े गुरु नानक नाम लेवा संगतां भवजल संसार तो पार हो जाणगियां। ऐसे वर महाराज जिया ने बख्शना कीते जदों उपर नूं चकिया है जिवें

0: पद कर धन गुरु अमरदास महाराज जी बोले ने।
1: जे कर सिखी मह मन माना,
0: जे कर भाई पारो जी सिखी इतनी प्यारी है, सिखी विच इतना

0: धन गुरु अमरदास महाराज जिया दा ऐसा प्यारा सिख सी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सी, ब्रह्म दा ज्ञान रखण वाला सी।
1: पुन डल्ले ते एक नर आए
0: संगत जी, जिस वेले भाई पारो ने अपना शरीर

0: एक लाला हुंदा साधु संगत जी जड़ा अपने हटी आला ओ लाला ओ पोला हुंदा इथे लाला है थोड़ा जा कस के उचारण करना इहदा भाव है गुलाम जा नौकर लाला अपनी जात गवाई
1: तन मन अर्पे।

सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए, ज्ञान रतन सच सहज समाए, नावै जीवड होर तहन नाही कोय, जिसनों बख्से साचा सोय, पूरा शब्द

0: नाचे कल का भाव जति सती कह राखे भाव। मन नारद बन गया है। ऋषियां दे चों नारद नू बड़ा सियाणा मनिया गया है, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसका सन्मान, टुटियां नू जोड़ देना उदे कोल सियाणप है, और दो सियाणियां तोड़ के रख देना ए वी उदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी, और जोड़ तोड़ ओही कर सकदा है जिदे कोल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ए युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ए युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पए सन। सतगुरु आप भी नवखंड पृथ्वी दा जो है भ्रमण करके देश विच वापस लौटे सन। बड़ा भ्रमण, बड़ा भ्रमण। बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए, फिर रशिया का इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भ्रमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया। इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी, तो समझान लगियां कुदरती गल है, इसदे अहंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग देच महात्मा बुद्ध ने भी देखिया, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान तान वाली ते कोई गल है नहीं, हंकार दी कोई गल ते हो ही ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज दा अहंकार कर सकता है, उदे कोल की हंकार रहेगा। मनुख दे हंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान, सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली विच रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नूं भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नूं वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी ये देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारियां लाल लई सी, सारियां लई ए लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसे शहर विच, तो उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस विच पढ़ सकदे न, बाकी नहीं, बाकियां लई दरवाजे बंद। इत बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारियां लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे? और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि विच समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस विच गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नू तैयार हां, मैं सिखना चाहना, और मैं कुछ नहीं जानना। इस तरह दे सारे जज्बात कठे होवन, इस तरह दियां भावनावां कठियां होन, ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है, इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकता और हंकारी सिख नहीं हो सकता। इन्हों दोहां दा आपस में संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नु समझिया, हाँ मैं हाँ मैं ही हाँ और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग हमें रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जड़ा बुनियादी रोग है अहंग हंकार। ये धार्मिक साधना करदिया भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुन दे राही भी प्रगट हो जांदा है, ये होर तरह तरह दिया साधना करदिया होया भी गुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, औगुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नो मिटाण दी इको ही औषधि गुरु नानक ने लभी, भी प्रथम तो ए कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार ते इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनू बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनू कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिना जिना कुर्सियां ते बैठदा सी उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनू हर पख दी समझ है, मैनू सब कुछ पता है। सिख मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा, और जीवन दे किसे पहलू दी मैनू कोई सूझ नहीं, मैनू कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नू देण वाले दी। जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे आधार मिट जांदे ने, उस दे टिकण दे आसन जिहड़े ने ओह टुट जांदे ने, और सिख वास्तविक एक मनमरता दी निर्माणता दी मूर्ति बन के उजागर होंदा है, सामने होंदा है। जैसे सारे औगुणा दा आधार गुरु नानक ने अहंकार नू मनिया है, सारे गुणा दी बुनियाद विनम्रता नू मनिया है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत तत, सारे गुण ते चंगियाईयां दा जो निचोड़ है ओ है मिठास विनम्रता निर्माणता। निर्माण मनुख दे बोलां दे सख्ती नहीं होंदी, देखदे हां हत्थां दे छड़ियां ने पैरां दे छड़ियां ने पिंजर है, प्रभु ने जबान दे हड्डी नहीं बनाई, कन्नां दे भी बारीक हड्डियां ने, नक दे भी हड्डी है, मुंह मत्थे ते भी हड्डियां ने, बाहां दे भी हड्डियां ने, पैरां दे भी हड्डियां ने, पर जिस जबान ने बोलना है उस दे हड्डी नहीं, हड्डी सख्त होंदी है। इस गल दा प्रतीक है ए जबान तेरी बोल तो तेरे बचना तो तेरे बोलां दे सख्ती नहीं चाहिदी, जबान तो जो बोल निकलन वो सख्त नहीं चाहिदे। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिदे ने, जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिदे ने। जिस तरह जबान ही सारे रस मान दी है, इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहंदे ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है, ते फिक्का कौन बोलदा है जो सख्त सुभाव दा हो गया, ते सख्त सुभाव दा कौन हो गया जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणा दी बुनियाद है, विनम्रता सारे गुणा दा आधार है, और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अंडिठ करन वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है, उदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उदे बोलां दे कोमलता, उदी दृष्टि दे अमृत। सतगुरु ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं जानना चाहना। पहले जब कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वो चल पे है, साधक हो गया, पर सब कुछ जान ले है, सब कुछ जान ले, सब कुछ दा पता चल गया है, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ए महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणा दा ढंडोरा नहीं पिटदा, ते कोई उसनों हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उदे कोई मान नहीं उस प्रभु देच, पावे गुणा दा खजाना है। इसी तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणा दा खजाना बन जांदा है, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो भी परमात्मा वर्गा हो जांदा है, ईश्वर वर्गा हो जांदा है। सतगुर इस तरह दी दात हर एक दी झोली च पान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਐਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਐਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਐਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ 604-351-5511 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111।

निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगा, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दई है, चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत का। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए, पुराणक प्रसंगां नु देखिए, तो जीवन दा दाता दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ती। पर शिवजी दे गले विच ते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वह सेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनया रहे बनया रहे बनया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साढ़े घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साढ़े घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दे, क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है और तेरा वसेबा शमशान है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है। मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जे जुग चारे आर जा होर बसोनी हो। जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर दस गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए।
सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे। नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब को। नौ खंड पृथ्वी दे पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जाणिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नो बड़े सोहने ढंग नाल समझे ते बयान कीता है। नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस की रथ जग ले। प्राणा दे होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे किस नदर ना आवई तां वात ना पुछे। जे नौ खंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसकी आयु हो जाए, जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्ना ही दोहां उलझना दे मनुख दा जीवन बतीत होंदा है, और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है जीवन दी लालसा ते मरण दे भय दे, एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आदि काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहे जिस विच मौत नहीं। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे, अमृत जीवन मृत्यु तो रहित हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन में अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत ते पशु पक्षियों भी नहीं चाहिए, उन्हां दे अंदर भी भय सिर्फ इसे रही है। जीवन दी लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई देती। अमृत दी चाहत, अमृत दी मंग प्रथम मंग है, फिर मोहर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुरु की बाणी का समान घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंड इसी जीवन सागर दे अंदर है, और इसी जीवन दा रेड़का पाना पड़ेगा। जप तप द्वारा इसी अमृत दे कुंभ नो बाहर प्रगट करना पड़ेगा। इस अमृत दे कुंभ नो कोई प्रगट कर सके इहदे लई प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इसदे लई तड़प चाहिए, इसदे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप न जब गेड़न दे नाल पानी ना निकले उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी ताकि अंदर का अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है बाहरों अमृत का संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत नू प्रगट करना, यह साधना
ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਜਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਸਨਦ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ ਤਪ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਧੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਧੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़ता है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा चार कुंटा च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ते लालसा जागी अपने सिख बनाई, अपने सिख बनाई, अपनी सिखी का वादा करी। लिहाजा कार भेट तो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे का पूरा खुद अपने कोल रखण लग पए, गुरु तक नहीं पहुंचांदे। इन्हां विच कुछ कने ते गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोग दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए, और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नू धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिया। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाथमा कमजोर होवे और वो पूजा प्रतिष्ठा नू हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नू हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा के लेंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसे किसे नू जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जदे मसन चोटी दे धनाड हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ए प्रचलित आपने कीता, और ए अधिकार एक नू नहीं पंजां नू दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े पंज? जो गुरु नू प्यारे ने, जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार है, रोम रोम विच गुरु का प्यार, ऐसे पंज जो गुरु नू प्यारे ने, ते गुरु का प्यार जिन्हां दे अंदर है, वो वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैया, चौफई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नू बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताके हिरदे नू जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी दे प्रवेश करन, ताके वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे दे च लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है, हिरदे दे च वासना है, अखां दे राही प्रगट आउंदा है, हिरदे विच परबल हंकार है, अखां राही प्रगट आउंदा है, पर हिरदे विच वसी होई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट आउंदा है, और उस सख नू अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जाता है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नू पढ़ के अमृत नू गुरु विधि अनुसार तैयार कर देने। ये प्रथा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विच खंडा नाल फेरी जाना,
ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੀਸ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਸ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਠੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਕਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਰੋਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਕਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਰੋਤਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਕਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਲੋ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਜੋ ਮਿਲੇ,
मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है कि पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इना विच ते मेरे कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लें। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया थे, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पन्ना ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हाँ तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे है ओही अमृत छका सकदे है। और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हाँ उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जो उस को रहनी हो। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरुप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समा। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ये सिख मैनू प्यारा ने। क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहने नहीं रही। धरे केस पाहुल बिना एक ही मूर्ख सिख, जिसको दर्शन ना है मेरा, पापी त्यागे दिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यो काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंद धरायो। खोते नु इशनान कराते, उदे गल विच फुल्लां दी माला पावे, और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंद धरायो, तैंकी कर तांकी शोभा नाही, आसी होय होत जग माही।
अगर रिश्ता करके कोई खोते नो बाजार विच ले आवे लोकी उस नो वड्याण नहीं लगे बल्कि हसनगे उसते भई लै खोते नो इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए मानो खोते नु स्नान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते का खोता है सिर्फ सिखी ई पंज हरफ हिरदे की बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उत्थे शरीर सिखी का स्वरूप पेश करेगा इना पंज ककारा नाल कक्का के इस दी आवाज जो पर्शियन उर्दू दे अल्फाज दे है अल्फाबेट विच उसनु कहने ने काफ। तो भाई साहब भाई नंद लाल जी फारसी दे ही आलम फाजिल गजनी तो आए लहजा उना दे बोल उना दी बाणी सारी सारी फारसी दे है। आप फरमान कर देने निशाने सिखी ई पंज हरफ का सिखी दिया पंज निशानियां पंज काफ दे हरफां दे बंद ने निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। इना पंजा देखों एक भी निशानी नहीं सिख हरगिज माफी का खौशगार नहीं बन सकता उसनु माफ नहीं किया जा सकता। केड़िया पंज निशानियां कड़ा कार दो का छकंगा बिना बिना केस हेत अच्छी जुमला निशा। कड़ा कार दो कृपान काच कछहरा कंगा बिना बिना केस हेत अच्छी जुमला निशा। पर केसा तो बिना बाकी चार निशानियां परवान नहीं जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी केसा तो बिना कड़ा कचहरा कंगा कड़ा ये शोभा नहीं पांदा। इना दी शोभा कृपान दी शोभा कड़े दी शोभा कचहरे दी शोभा कंगे दी शोभा केसा करके केस मूल ने क्योंकि राजे परिषद तो सड़े देश दे केसां दा मुंडन आम चल पिया सी भावे सब तो प्रथम उसने केसां दा मुंडन उना ब्राह्मण जिन्हां ब्राह्मणा ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपति की थी। ओ किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई ते सारे दे सारे हस पए जनमेजे ने इना दे सिर मुन दिते कुछ कतल किते बुथेरिया दे सिर मुने। इस तरह सिर नु मुन्ना मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने इस सजा ही दिती। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग दसम ग्रंथ विच लिखिया प्रथम बांध के सबके मूड मुंडाए पुनर ए डुआ सी इस तांके लगाए इना ब्राह्मणा नु बन के उना दे शीस मुन दिता मुंडन कर दिता ते उना ने घोर बेदबी की थी। फिर इना नु छोड़ दिता इतनी वड्डी सजा देती जिना नु छोटी सजा दिती उना नु तो सजाए मौत दिती पर जिना नु वड्डी सजाए दिती उना दा मुंडन किता जीवदे ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा थोड़ा जोड़ा थोड़ा दाड़ा थोड़े केस
तो इन्हां ने कहा पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई, हां ऐसा करना पै, ये सोग धारण करना पै। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया है। ये मुंडन सोग दी निशानी, दुख दी निशानी, मौत दा प्रतीक सी। सहजे सहजे जद आध्यात्मिक जीवन रहा ना तो मुंडन आम हो गया। जनमेजे ने कुछ ब्राह्मणा दा मुंडन कीता सी, इना करके इंज कह लो सारे देश दा मुंडन हो गया। केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जब कोई नाम जपदा है बाणी पढ़दा है तो मस्तक दे शक्ति जमा होती है, रस जमा होता है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए, केस मदद कर दें। केसा दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारिज होवे तो दस्तार मदद कर दिए। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत दे सिरमौर ने ऋषि मुनिया का रूप ने, मुखड़े का दाड़ा प्रकृति का दिता हुआ पुरुष नो शिंगार है। जैसे असी देखते हैं शेरनी दे गल दे, ए लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन विच, जितना खूबसूरत मोर है मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं। ए लंबे लंबे पंख प्रकृति दा दित्ता होया शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा तोता कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत दा दित्ता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष दी शिंगार विच रुचि नहीं रही, स्त्री दी ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष दा मुखड़ा

0: ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਚੀਨੀ ਸੰਤ ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪੈਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪੈਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮੀਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਕਿ ਹਰ ਗਿਜਨਾ ਵਾਸ਼ਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਫ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਾ ਚੁਕੰਗਾ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤ ਈ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਖੁਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਾਖੁਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਗਾ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਬ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਜ਼, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਰਗਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰਦੇ। ਨਾਖੁਨ ਜੋ ਮੁਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਨਮਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਖੁਨ ਉਹ ਜੋ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੁਰਗਾ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਖੁਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਅੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਕੁਛ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਾਖੁਨ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, और पुराने झड़वे ने केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलता रहता है। कुछ ते सियाने कहते ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर जो कुछ भी है जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते निकल जाते हैं और जो जिंदा ने ओ सवर जाते हैं सवर जाते। प्रकृति केसा नूं एक सीमा तक रखती है, चाहे वह मुखड़े देने चाहे वह सिर देने। असी देखते हैं जो केसा का मुंडन करते हैं आखिरी दवा तक केस उन्होंने वधदे ने, दाड़ा मुने है चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुने है चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नूं इस मुनन नूं कोई छोड़ देवे तो दाढ़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावें नवे जन्म दे रहे ने मुर्दा झड़ते रहते हैं लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहती है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग विच हार ही होंदी है, जित नहीं आउंदी, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहते हैं वधदे रहते। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म आउंदी गई, नाम अभ्यास खत्म आउंदा गया, केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असीं देखदे हां कि रामलीला विच राम पेश करना है स्टेज ते, विश्वामित्र नूं पेश करना है, विशिष्ट जी नूं पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, दाड़ियां भी चाहिए ने। और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े नकली दाड़ियां खरीद के लियाईआं जांदियां ने। असीं इस गल दा माण कर सकदे हां कि साडे सिर ते जोड़ा असली है राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारां दा स्वरूप, ऋषि मुनियां दा स्वरूप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडी झोली दे पाया है। हाँ जद कोई ऋषि होण तो मुनि होण तो संत होण तो थले जांदा है, मनुखता तो थले गिरदा है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया दे केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिया कौम जिसनों असीं सिख कहिंदे आ केस इस कोली दिखाई देंदे ने या कुछ थोड़ा जिया साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए मुहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हाथ विच है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है। और इस तरीके नाल असीं देखदे हां बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष उधारी ने केसाधारी ने। जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा आदर नहीं रहा उस दे पिछे चलन की लोड़ की है। हाँ कभी कभी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर से रख के नकली दाड़ा मुखड़े से लगा के इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्ह अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन। और जे इन्हां दी उस जमाने दी लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो तेज से पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया और प्रदान करके साफ आग्रता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दीए तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है माण नाल सतगुरु। इत्थे तक कहंदे ने इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। किसी नू शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है। तो महाराज कहंदे याम में रंच न मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे ते मेरे कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया मन करके तन करके। जब वाकई बाणी हृदय प्रवेश कर जाए, रोम रोम देख प्रवेश कर जाए तो हृदय गुरु वर्गा बन गया और तन देते जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नू मान नाल कहना पैंदा है कि मेरा अपना रूप, ये मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे का सत्कार करना पैंदा है। खालसे नू सज्जन कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, गुरपूरा करके कहंदे ने और खालसे नू अपना स्वरूप करके जो है बयान कर देने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ये अमर देन, ये अदुत्ती देन सहजे सहजे अज जगत के चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सहजे सहजे सतगुरु की इस दात नू धारण करने का भी माहौल बनना आरंभ होया है। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस देन नू अमर देन समझ के, प्रकृति की देन समझ के, परमात्मा की देन समझ के हर मनुख कबूल करेगा, अपनाएगा। अरदास है उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये दास, गुरु नानक की ये बख्शिश झोली दे संभाल के रख सकी, ताकि गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े ते माण कर सकन और माण नाल कह सकन खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मैं खालसे देखा खालसा मेरे विच है, हुण कोई भेद नहीं रहा, और रंजक मात्र भी भेद नहीं रहा। या में रंज न मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साहिब।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਟਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟੇ, ਉਹ ਵੰਗਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ कि मैं बार बार मिर्चा कुट दी है बंगा टुट ना जान। एक बंगा उन्हें प्यार नाल लईयां सन जां उहदे घर दे ने दित्तियां ने, उन्हें फिर की कीता बंगा ना टुट जान, मिर्चा कुटनियां औखियां सन। वह साधु वेखदा उन्हें एक एक करके दो चार दस बंगा लग के रख दित्तियां। हुण उहदे हथ विच दो बंगा सिर्फ रह गईयां, वह फिर मिर्चा कुट रही है। वह दो बंगा भी आपस में खड़क रही ने, कहते ने साधु वेख रहे उन्हें उहदे विचों भी एक बंग ला दित्ती। सारियां बंगा हथ विचों लाणियां उहदे मन विच ऐ सी ये मेरे सुहाग का शिंगार है, सारियां किवें ला दां। उन्हें बंगा ला दित्तियां, एक बंग हथ विच रह गई। तां फिर जदों मिर्चा कुट रही है वह बंग खड़क नहीं सी रही, क्योंकि इकली नहीं खड़केगी। एक बंग तो हथ विच खड़ाहट छणकाहट नहीं करेगी, तो उन्हां हत्था नाल फिर कुंडे नालों मिर्चा कुट रही है। साधु वेख रहा है, उन्हें वेख के इसे गल तो एक सिक्ख्या धारण कर ली। जदों ने उच्ची अलख जगाई, वह माई ने अपनिया मिर्चा कुटदिया छड के लिया के आटा पाया, ते नाल कहनी बाबा मेरे घर में सुख होवे कोई आशीर्वाद दे के जा। ते उस बाबे ने इको गल कही, फकीर ने कहन लगा माई तेनू मैं की आशीर्वाद देने, मैं तो तेरे को कुछ सीख के चलना। उन्हें कहा बाबा मैं तो बोलिया ही कुछ नहीं, मेरे को की सीखे। कह लगा भैने कदों का मैं वेख रहा, तेरे हाथ दियां बंगा छणक रही सी, तू एक एक दो दो करके ला दतियां, हाथ विच कोई बंग रह गई। मिर्चा कुटद्या हुण एक बंग खड़की नहीं, सब खड़ाका खत्म हो गया। इयो सीखण विच मैं सिक्ख्या ले लई, जिन्नी देर बंदे दे मन में द्वेष है उन्नी देर झगड़ा कलेष कल कलेष सब कुछ रहिंदा है। जिदन सब कुछ छड के एक नाल जुड़ जाए उदन उहदे घर दा खड़ाक कलेष खत्म हो जाण। भाई तेरे मन अंदर इह ताइयों दुबदा करके, मन विच दुबदा है ते मन मलीन है, ये बुरे पासे तुरद। जिदन एक उत्ते विश्वास टिक गया उदन जो वह दवे सात संगत एक अकाल पुरख रब ते विश्वास बनद, फिर मन बहमा भरमा में दुखी नहीं हुंदा। ये दाते दे दिते सुखां विच भी सुखी है, फिर दुख विच भी सुखी रहन लग पे। माई मैं तां तेरे तो सीखे, एक वंग रह जाए तो खड़ाक मुक जांदा है। रब एक परमात्मा नाल किसी की सुरत जुड़ जाए उहदे जीवन दे झमेले मुक जांदे ने। ताइयों साहब ने कहा एको जप एको सलाह, एक नूं जपया कर, एक दी सिफत सलाह कर, एको

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू परवृत नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावा, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जिहड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा हुई फसल, जमीन दे विच पैदा हुए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा हुए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख-वख जीवां विच परमात्मा ने वख-वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनों दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओ केड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नू चिकड़ विच खिड़े हुए नू पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी का ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उदा सुभाग है चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू चुका के अपनी पिट ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं। मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण उह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खोन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पे कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है। हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है, ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह वी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वह सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार

पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर घड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्होंने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटा बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटा बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटा बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउणी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटा है बिन प्यार मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वे विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद लंगे फेरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद शिव तुस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा

उड़ उड़ रावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपालोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा बाले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनीता सो कर

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाई है पर गड्डी है खास पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्व अकल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदार जे को तौकबे रुती हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए फैबज खुमचड़ा ये सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे कूड़े सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार।

0: तुम्हा पुरा तपे का सात गेर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में आशा सच रहे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सतिये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंतर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पड़के थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग गया पे बते बड़ता।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड़ रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे

पौरिया पहिकरणा कियो कला पहिता धारिये देखे किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चलसी।

आपे पांडे साजन आपे पूरुंडे इक नी दुद्ध समाई अग चुले बैं चढ़े इक ने हाली कैसवारी गुपुरान खड़े तिना सुवारे

0: वाहेगुरु जी की
1: फतेह। You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
3: लुकराजा गरीब लिमाजा हरी बुल सकाने हरास लुप करने कलंक कंग प्रनास है समस्तुल निवास है गंज लुगनी मर जाए कि ही मैं समतल जुबा है कि साहिब करा है कि कंग प्रनास है बेस्तुल निवास है कि सर्व लुगवान है बेस्लो रवान है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है देसुल अलेख है मेसुल अपेख है जमीन उल जमा है अमीकुल इमा है करीम उल कमाल है कजुरात दिमाल है कचलंग प्रकाशक मित्तो सुभाषक अजु सूप है कमित्तो विभूत है कमित्तो पसा है कि आत्म प्रभा है कचलंग अनांग है कमित्तो अपंग है मद परशंतो प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हनर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनपव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थन मुदाम छिज अंग आसन अपंग पुमा पारगत मित उदार जल थल यमन दे स्वेस भंड जल थल महान दे स्वेस बेअंतन भव अनास्त्रित धर तुर आसवा जान बाहुए कै सदा हो ओंकार आदि कथनी अनाद कल खंड के आर गुर बरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिज गाद अज दिना बाद अनझंच गाद अंदरंज बाद अनपुट भंडार अनठट अपार आदीठ धर्म अद ठीठ करम अन ब्रण अनंत उदाता महंत हर बोल मनान छन तो प्रसाद करुणालय है हरकाल है कल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबार है धृत कितरण है जाके करण है मान मान्य है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्व पास है सर्वनाश्या है करुणा कर है विस्मंग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड है कल खंड है परते पर है करुणा कर है जपा जाप है थपा थाप है अकृता कृत है अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है त्रिनेत्रेत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृत अमृत है जिबा कृत है अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विस्मंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्वपायक है भाव पंजन है अरगंजन है रेप तापन है जापो जापन है कलंकृत है सर्वागृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वयात्म है आत्म बासन जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो ब्रेन ब्रिंदे नमो बीज बीज नमो राज संग ताम संग साध रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक पंके अपंगी रूपे अनंगी अनामे त्रे पंगी त्रे काले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजह अलह अपह अभ अपू अजू अनास अकाश गांज भांज लाख अपाख काल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह नाथ परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमंग भनमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवास इंद्र कामंग विभूते समस्तुल स्वरूप कर्मंग प्रणासे स्तरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीम मुलुक निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयं पल सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं तो प्रसाद सवैये सरावग शुद्ध समूह सदान के देख प्रयो कार योग जति के सूर सुरार दन शुद्ध शुद्ध आदिक संत समूह अनेक मत्ति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कून देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते गति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर सांग अनूप उतांग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कुबदत पावन के गौन को जात निवारे पारी भुजान के पूर्व भली बेद न्यावत सी।

प्यारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पाद श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के त हम सुधारे। तीर्थ नहान दया दमदान सो संजम ने।

श्री पाद श्री भगवान कृपा बेनौ त्याग ध्यान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हिसार की तहार पशैया तोरत देश मलेंद मवासन माते ज्ञान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़न हार सुबातन ही चगचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाज कनेक सो एक दिवैया दानव दे फनेंद ने साचर पूज पुहिक पुहान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत हुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सतर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र।

भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पात अंत फसे जम फास परेंगे। जे नार श्री पद के प्रस हैं पाग ते नर फिर न देह परेंगे। कहा भयो जो

अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पज खान बाहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पायो शंकर एक सगरी सृष्ट दिखाए चम पावे आज जुगाद स्वरूप सोयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असक संगरो दुष्ट जिते उठवल उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तु तब सरनी परे तनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रच्छा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुवै सगै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ केत मैं सरन तिहारी आप हार दै लेह उबारी सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री असोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तसा व्यापत कोई अडिल। सुनया गुंग जो आहे सो रसना पावई सुनया मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकट ना तिन नर के रह हो जो यागी एक बार चाओ पई को कह। चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस पुण तीन कहिजै भाद्रव सदी अष्टमी रवे वारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

एक ना मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहा हम एक ना जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो।

पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किना तेरा, अपना आप तू जान हे। जी अजंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणा ए, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत पाया कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपाय, वेख परसन आया। लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, हेरी बिखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसाद जिन्नी आप तजिया, हर वासना सुमाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। जिहो तू चलाए हो तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चलह जिना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावे, जिस नो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वार है सुख पावे। कह नानक सचे साहिब ज्यो भावै तिवै चलावे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया। एहो दिन कै मन नवसिया, जन तुरहो लिखिया आया, इक फिर है कनेरे कर है गलना, गलनी कनै ना पाया। कह नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित सिव, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए, न जाए सहसा कितै संजम, रहे करम कमाए। सहसा जीओ मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लाग हो, हर सो रह हो चित लाए। कह नान गुर प्रसादी, सहज उपजै एह सहसा एव जाए। जी अह मैले बाहर अह निर्मल, बाहर अह निर्मल जी अह ता मैले, तिनी जन्म जूवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया, वेदा महनाम उत्तम सो सुनहे नाही, फिरहे जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जूवै हारिया। जी अह निर्मल बाहर अह निर्मल, बाहर ता निर्मल जी अह निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुचै नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जी अह रहै गुर नाले। गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रहै परणै, गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनहु संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर तेवे मुख होवै, बिन सतगुर मुगत न पावै, पावै मुगत न होर थै कोई, पुछो बबे किया जाए। अनेक जूनी परम आवै, बिन सतगुर मुगत न पाए, फिर मुगत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखा हो, बिन सतगुर मुगत न पाए, आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहु सच्ची बाणी, बाणी ता गावहु गुरु केरी, बाणी आंसर बाणी।
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹਿ ਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚੇਤ ਜਨ ਕਾਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜੇਤ ਜੜਾਓ ਸਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਏਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੇਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਿਵ ਸਗਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ

ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

0: सच पाई सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा
1: आपे देवड़े आपे कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड्डमेज ने सिर धंधे लाएंदा नदरों पट्टी जय

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa, baby. Yeah.
2: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

सतसंग जी माहौल दे मुताबक इतिहास दे कुछ पन्ने मुल्की हालात नूं थोड़े इत्थों दे हालात नूं सामने रखदे आया बयान करन दी निमाणी कोशिश करां। पेशतर सनेमर गुरदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दा मन शक्ति तो प्रभावित है ताकत तो। अरदास दियां ये पहलियां पंक्तियां प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति, भगवती शक्ति नूं कहिंदे। हुण मैं अर्ज करां ईश्वर एक शक्ति है व्यक्ति नहीं। ध्यान नाल सरवण करना। मैं पहले भी अर्ज कीती सी कथा किसे थां तो आरंभ करनी पैंदी है किसे थां समाप्त करनी पैंदी है। कई दफा कुछ गल्लां मैनूं रिपीट इस वास्ते करनियां पैंदियां ने कि जो बाद दे चांदे ने उन्हां दे फिर पल्ले कुछ नहीं पैणा। कीर्तन किसे थां तो भी असीं सुण सकदे हां। विचार बारे ये गल नहीं है। किसे थां तो सुनिए तो कुछ पल्ले नहीं पएगा। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नूं व्यक्ति मन लईए ना तो फिर उसका जन्म भी मनना पएगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पएगा। मैं उस दिन अर्ज कीती सी संसार दो रंगी है। कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान अजन्म है अमरण है। तेरा कोई जन्म नहीं तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ मां बाप ही नहीं उसकी जात पात भी मननी पैगी। फिर परमात्मा की कोई जात भी होगी। सतगुरु कहिंदे ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहिब पढ़दे होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पएगी। केड़ी नस्ल है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर केड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जर्दी महिला या रंग की है? खलड़ी दा रंग उसका कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने अरूप हैं अनूप है कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनु व्यक्ति मनते हैं तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहब कहते चक्र चेन अर बरन जात अर पात नहिन जे। रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत कह। अगर उसनु व्यक्ति मनिए तो उस परमात्मा का कोई मजहब भी होगा। हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, पारसी होगा, जैनी होगा, बोधी होगा, कुछ ना कुछ होगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो फरमान करते ने नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है,
तेरा कोई मजहब नहीं है, तो हिंदू नहीं है, तो सिख भी नहीं है, तो मुस्लिम नहीं है, तो क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोविंद सिंह जी दे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनो, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुक्ते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास दे पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनु व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च एक ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसी इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है, तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या कोई सचखंड बैकुंठ दे बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय एक कोई थां ते आंदा है, सारी थावां ते नहीं आंदा। सतगुरां दी बाणी कहिंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। हे सिरजन हार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनु व्यक्ति मन लिए, तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं, हर समय नहीं है। जिमें असी 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी, नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, ते हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मापिया जिन्ने तू जनिया। कल ते मां है सी, बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, आज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है, तो परमात्मा नु भी काल दिच बयान करना पेगा, समय दिच बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते हैं, अकाल है, अजाल है, उस समय दिच नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नु व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नु बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होगा, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनु बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरम मना रहे। तो फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है, जिन्ना जिन्ना ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष दी पूजा, किधरे नारी दी पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए, जैसा परमात्मा नु मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिनू सोचिए, जिनू याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जांदा है। अगर उस विच इस्त्री चिंतन सी, इस्त्री दियां यादां सन, इस्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर इस्त्री दा। महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है,
इस वास्ते वह स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्हों सुन समाधि कहने सुन समाध अनहद तैनाद कहन ना जाई अचर्ज बिस्माद। जिस दिन चलते हुए विचार मन विच रुक जाते निरंकार प्रगट हो जाता है। जब कोई भी फुरना ना चले कोई भी विचार ना चले उन्हों गुरु अर्जन देव जी सुन समाद कहते हैं। सुखमनी साहब की पंक्ति सुन समाद अनहद तैनाद कितना भी पाठ करदे अंदर साडे विचार चलते हैं। कितना भी वाहेगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलते हैं। कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलते हैं वो नहीं रुकते। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था देच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहने स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज करा परमात्मा की ये शक्ति है व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है रंग रूप तो न्यारी चक्र चैन तो न्यारी वर्ण जात तो न्यारी मजहब तो न्यारी एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ए ना ले लेना कि जड़ है नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है सदीवी है शिवम प्रकाशमान है। शिव दे अर्थ प्रकाश चानना प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने सत सुहाण सदा मन चाओ। तू सत है सुहाण अति सुंदर है सदा मन चाओ। तू सदीवी खिड़िया होया आनंद स्रोत है। वैदिक ऋषियां ने भी ऐसा कहा सत चित आनंद। वो सत है चित चेतन है जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन सत चित आनंद आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है। मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नु सामने रखिया सी जिथे ताण होंदा उथे माण होंदा। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश च है शक्ति की तलाश च है। ते दूर क्यों जाओ परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इसते भी ले लवां। एक फुल खिड़े है रंग लेके रूप लेके सुगंध लेके आकार लेके ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया। रंग उथे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया फुल दा रूप भी खो गया। ए रूप किथे चला गया। ए रूप उथे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया।
आकार उत्थे चला गया जिदा कोई आकार नहीं, उन्हों निराकार कह निरंकार, आकार तो रहत कोई आकार नहीं, सारा आकार उस तो आउंदा जिदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उसे तो आउंदे जिदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उसे तो आउंदे जिदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है, उस शक्ति नू अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसे ने गोपाल किया, किसे ने गोविंद किया, किसे ने राम किया, किसे ने करतार किया, किसे ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहिगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहिंदे ने मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है, सूरज नू सन कहिंदे ने, सूरज नू भान कहिंदे ने, सूरज नू रवि कहिंदे ने, सूरज नू सूरज कहिंदे ने, सूरज नू खुर्शीद कहिंदे ने, सूरज नू आफताब कहिंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दियां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने, सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अगले अलग नाम ने बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामा ते झगड़ा है, सूरज दे नामा ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नू संस्कृत दे भान कहिंदे ने, संस्कृत दे रवि कहिंदे ने, दो नाम ने, रवि ए भान है, ए रवि है, ए सूरज है, ए आफताब है, ए खुर्शीद है, ए सन है। कबूल है, ठीक है। जिड़ा सन है ओही आफताब है, जो आफताब है ओही खुर्शीद है, जिड़ा खुर्शीद है ओही सूरज है, जिड़ा सूरज है ओही भान है, जिड़ा भान है ओही रवि है। सानू कबूल है, पर जिड़ा खुदा है ओही राम है, जिड़ा राम है ओही अल्लाह है, जिड़ा अल्लाह है ओही गोविंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाने पुरुष की कहंदे ने, जितनी अज्ञानता धर्म दी दुनिया विच है, इतनी अज्ञानता समाज विच, अर्थव्यवस्था विच और राजनीति विच नहीं है, जितना अज्ञान धर्म दी दुनिया च। समाज दे संबंधां विच, अर्थव्यवस्था विच, राजनीति दे च इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म दी दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान दा पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान दे स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहिंदे ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगा। इक्को ही पुन है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। इक्को ही पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनों पूर्ण खुलासे दे रूप ते किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नू दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे इक ऋषि होया है जिहदा नां सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां, अगर हजारां बावां एक बंदे दी आउन ते सारे हाल च मेरे ख्याल इक्को ही बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उहनां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाहो, दो हत्थां विच हजारां हत्थां वर्गी ताकत, दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हत्थ जुड़ जाण उस दे अगों,
तो सेंसर बाहू हो गए और की वो देखो हजारों बंदे हाथ जोड़ के खड़े हो गए सेंसर बाहू दह सिर कहने रावण दे दस सिर सन नहीं दस सिर जितना सोच सकते ना कला सोचता सी दस सिर जितना याद कर सकते ना कला करता सी तदी ते उसकी लंका सोने दी सी तदी ते चंद सूरज ताके तपत रसोई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है उस जमाने च उहदे महलां दे च सूरज की शक्ति नाल चुले जलते सन रसोई दे च उस जमाने च साइंस ने ते अज ये कमाल हासिल किया है रावण ने उदो हासिल किया होया महलां दे कलस उन्हें सोने नाल लाया लदे हुए इस वास्ते स्वर्ण लंका उसनू कहिंदे सन हर पक्ष चो सियाणा सी बड़ा बुद्धिमान सी शिवजी दा भगत सी इस कथा नू भी मैं छेड़िया इस पासे मैं लंबा चला जावांगा समय इस चे लग जाएगा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने आप सुन के हैरान होवोगे रावण दे एक पहलू दी उपमा कीती है चौबोले महला पंजवा गुरु अर्जन देव जी दी बाणी सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट महाराज कहिंदे ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमणियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चौंदा सम्मन जो इस प्रेम के दम के होती साड़ सट्टा वट्टा दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल तो रावण होते सो रंक ने रावण कोई भिखारी नहीं सी जिन सिर दीने काट जिन्हें अपना सीस कट के शिवजी दे अगों रख दिता क्योंकि उहदा एक सिर दसां सिरां वर्गा सी वह इतना सोचदा सी जिवें दस सिर कोई सोचन उहदे इतने प्रबल विचार सन दस सिर भी नहीं सोच सकते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज सिरां दी मंग कीती सी तां पंज खड़े होए शिव जी ने मंग भी नहीं कीती रावण कट के अगों रखदा इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है ते रावण कहिंदा है ए शिव जी जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद भदया हथ नहीं है मैं उस सिर नू की करा ठीक है मैं सोच लेना विचार लेना आलम फाजल हाँ विद्वान हाँ चार वेदां दा पाठी हाँ ते चार वेदां दा ज्ञाता भी हाँ पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेर भरिया हथ नहीं होया मैनू आशीर्वाद नहीं मिले मैं सिर नू की करा इतना सियाणा इतना वड्डा भगत इस शिवजी दा भगत सी राम भी शिवजी दे भगत सन रामेश्वरम दे शिवजी दी पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई की थी दोवें शिवजी दे भगत सन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने सम्मन जो इस प्रेम के दमके होती साठ रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट सारी दुनिया च खास करके साडे देश च साल दे साल पुतला जलाया जांदा है रावण दा इन्नी बेइज्जती अज तक किसे दी भी नहीं हुई जिन्नी उसकी हुई है एक दफा किसे दा पुतला जलाया या दो दफा साल दे साल जलाया जांदा हैरानगी पुतला खड़ा कर देंगे सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे प्रसाद भी रखणगे भाई हद हो गए जिन्हों फूक देना है ते जिहड़ा कहिंदे वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनू मत्था टेकण दी की मौ प्राणा विच अहसास है वेदां दा ज्ञानी सी शिवजी दा भगत सी ये भी मैं अर्ज करां शाम नू जद राम तीर मारदे ने जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उस दे और लंबी चौड़ी गल है जद मरण लग्या सी रावण दम तोड़न लग गया श्री राम अपने भरा लक्ष्मण नू कहिंदे ने
जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है, बड़िया विचारा, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ ये भी ये नाल चली जाएगी। इदा आखरी दम टुटे तो इस दे कोलों कुछ ना कुछ लेके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजदे ने वह मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण की जैसी तबीयत सी क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक् कट चुकया सी। इह संत का काम नहीं है नक् कटना, तो स्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी, स्वयंवर स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुनदी सी, ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयंवर स्वयंवर चुनना है, आप वर्ण चुनना है, समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जांदे ने। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत देश नाकाम होके रद्द कर दिता गया भी नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी, सिर्फ इस कोल जज्बे ही आते हैं, सिर्फ इस कोल भावकता आती है, इहदे कोल दूरदृष्टि नहीं आती। स्वयंवर भारत देश फेल होया, स्वयंवर अमेरिका ते यूरोप दे देशां च फेल हो रहा है। कैलीफोर्निया दे डॉक्टर मनजीत सिंह ने मैनू दस्या 87% शादियां कैलीफोर्निया तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां, हालांकि खुद चुने आंदा है, खुद शादियां कीतियां, मां बाप की मदाखलत भी नहीं, समाज की मदाखलत ही नहीं, फिर क्यों नहीं निभदी। सिर्फ फोके जज्बियां दे तहत चुनाव आंदा है, जज्बे ठंडे पै गए, तलाक हो गया। एक स्टेट दे अंदर, बाकी स्टेटा च नहीं, एक स्टेट दे 87% शादियां तलाक हो जांदियां। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत विच फेल होया, समाज ने रद्द कर दिता भाई नहीं, आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी, करेगी तो उसते उंगल उठाएगी, समाज ही बच्ची गलत है। यूरोप देश अमेरिका कैनेडा दा स्वयंवर फेल हो रहा है, पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। स्वरूप नखा ने लक्ष्मण नु चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी, लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक् कट दित्ती। ते स्वरूप नखा उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे स्वभाव दे मुताबक नाम रखे जांदे सन। स्वरूप नखा उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन, ते लक्ष्मण ने कहा नक करके तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट देना, कट दित्ती उहदी। एशिया दा इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वह ते राजा सी, बदले की भावना ते आ गए। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिवजी का भगत सी, पर भैन की नक् कटी। इतिहास के निक्के पहलू मैं थोड़े सामने रखे। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण दे सिर दे बाहर खड़ा होया है और कहिंदा है ब्राह्मण देवता सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू दी, जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गईं। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नूं कहिंदा है भगवान, ओह ते बोलदा ही नहीं, पता है राम ने की आखिया, तेनों बुलाण दी जाच नहीं आई, तेनों ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा ओ विद्वान है, शिवजी दा भगत, ओहदे कदमां विच खड़ा, ओहदे पैरां ते मत्था टेक, फिर हाथ जोड़ के मंग कर, इंज ज्ञान दी मंग करी दी।
ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਲ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਛੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰਗ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰਗ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸੇਰ। ਬੁਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤਤ ਛਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਪੋਨ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸੇਰ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਰਾਵਣ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਬਿਭੀਸ਼ਣ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚਿਤਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਰੱਬੋਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤਾ ਸਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ। ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੋਟ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾ। ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਆਉਣੀ ਹੈ,
कितना दर्द होया होना है। इस फकीर तबीयत इंसान नाल ऐसा क्यों होया, एक पासे सता एक पासे सत है। सत हमेशा बैरूनी तौर ते हारदा होया दिखाई देगा, ईसा सूली ते सताधारी वेखदे पैने तमाशा, पर सतवादी ते सूली ते मैं हैरान होना। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष दा जन्म जेल दे च होया, श्री कृष्ण दा जन्म जेल दे च होया, माता पिता देवकी वासदेव जेल दे सन, जेल दे च ही जन्म होया। ढंग नाल इन्हां नूं बचाया गया। राज घराने दा ए फरजंद ग्वालियां दे च पलिया, गुजरां दे च पलिया, जन्म दिता है देवकी ने, पालिया जसोदा ने, पिता ते वासदेव है पर नकली प्यो बन गया नंद बाबा। राज घराने दा ए बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके गवां चार के अपनी उपजीविका चलांदा रहा, गुजरां दे च पलिया, ग्वालियां दे च पलिया। संत या ते सूली ते या लड़ाई दे च कोई उसके दंद तोड़दा है। संत दा जन्म जेल दे च ते संत दा अंत भी जेल दे च। दुर्योधन दी कंस दी जेल दे च श्री कृष्ण दा जन्म होया है, जहांगीर दी जेल दे च गुरु अर्जन देव जी दा अंत होया है। हैरानगी, संत दा जन्म जेल दे च, संत दा अंत जेल दे च। कारण सता ते सत दा घोल है, सताधारी सतवादी नू कबूल नहीं करदा, नहीं मनदा। जैसे जैसे सता वद्दी है, ताकत वद्दी है, मनुख दा हंकार वद्दा है। ताकतवर होवे ते हंकारी ना होवे ऐसा होंदा ही नहीं है। बहुत ताकत वद गई सी हरनाकश दी, हंकारी मनुख निरंकार नू इनकार कर सकदा है, हरनाकश ने कर दिता सी, आखिया कौन रब आउंदा, मैं खुद रब हां। नमरूद ने कर दिता सी, कौन खुदा आउंदा, मैं खुद खुदा हां। नमरूद ने ऐसा कह दिता सी मिस्र दे उस वक्त दे नवाब ने, मैं खुद खुदा, खुदा की आउंदा। हरनाकश ने कह दिता सी परमात्मा की आउंदा, मैं खुद परमात्मा। वो अपने 5 साल दे बच्चे नू कहिंदा तू जपया कर मेरा नाम ताकि बाकी बच्चे भी जपन। पहले बच्चियां तो जपवाइए, फिर जवानां तो, फिर बुढ़िया तो, शुरुआत बच्चियां तो करिए। पर बच्चा बड़ी निराली तबीयत दा सी, मां तो संस्कार मिले सन परमात्मा दे। ते किसे वक्त मैं अर्ज करांगा 90% मनुखी बच्चे च मां दे ही संस्कार होंदे ने। यही कारण है कि एशिया दे च अगर बच्चा भैड़ा है तो गाल मां नू कढ दे ना, गुस्ताखी माफ। जद हरनाकश प्रहलाद नू कहिंदे तू जप, जल हरनाकश थल हरनाकश, ये 5 साल दा बच्चा कहिंदा बापू की बच्चियां वाली गल कर दे, जल है राम थल है राम। ये 5 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है, वो 72 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा। अधकड़ उम्र च उसके घर औलाद हुई सी, होए इक्को ही लड़का सी, ये तो बच्चियां लिए गल करदा है। दाढ़ी सफेद की थी धुप दे, कुछ भी ना होया, कुछ भी ना होया। ईरानी सूफी संत ठीक कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नखे बा माल। बुजुर्गी ते अकल तो है, उम्र तो ना ना पहुंचदी, उम्र कितनी है, हो सकदा 80 साल दा होके भी बच्चियां लिए जिंदगी बतीत पिया करदा होवे। अक्सर बुढ़िया दे बच्चे मिलणगे, कदी कदाई कोई बच्चियां च बुजुर्ग भी मिल जांदा है। 5 साल दा ध्रुव है भगत है, 5 साल दा प्रहलाद है भगत है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो पुछो भाई नाम किवें जपिए, भगत कबीर कहिंदे ने राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ए 70 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपिया, जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपया।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ। ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਲੇ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਹੀਮ ਅੜ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਣ ਸਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਖਟਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਕੁਛ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਇਓਂ ਜਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਉਸਦਾ ਪੀਛਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਹਮਾਇਓਂ ਅਸਫਾਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਅਹਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਅਕਬਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਟਕੀ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸਨੂੰ। ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ, ਬਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਰਹੀਮ ਦੁਹਾਵਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੁਕਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੁਕਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਾਨੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਆਮ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਸਾਮ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ, 1000 ਕੋ ਹੁਣ 1500-1600 ਮੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਧੂਕੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਕੁਛ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਰਹੀਮ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੇ, ਮਾਂਗ ਮਧੂਖਰੀ ਖਾਏ, ਯਾਰੋ ਯਾਰੀ ਛੋੜ ਦੋ, ਅਬ ਰਹੀਮ ਵੋ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਦੁਹਾਵਲੀ ਹੈ, ਬਈ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਰਿਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਰਹੀਮ। ਹੰਕਾਰ ਜਦ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ, ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਝ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਤਾ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਸਤ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਪਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਨੇ, ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਣਕ, ਬਿਦਰ ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਭਰਤਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

Lorena e Nando. अगला सियाणा होवे ते ए सोचे जड़ा मेरा मेरे पैरी पै रहे है, मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते पै रहे है, मैं चल ना सकां, सियाणा होवे और वो इस तरह काबू ना होवे तो फिर सदा दूसरा गुण वरतीए कि दाम कुछ दे के खरीद लो। हर चीज जगत विच बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार विच स्त्री की असमत बिकती है, सारी दुनिया च पुरुष का ईमान बिकता है, धर्म बिकता है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मनुख नु मुल मिलना चाहिए है, वो ईमान भी बेचण नु तैयार है, धर्म भी बेचण नु तैयार है, कौम भी बेचण नु तैयार है, सब कुछ बेचण नु तैयार है, मुल मिलना चाहिए है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, मिर्जा गालिब, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। खरीद लो इसका ईमान, खरीद लो इसकी अणक, इसकी गैरत, इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत, दाम। पर अगला इतना अणखीला होवे और आखे मैं कोई वस्तु नहीं हाँ कि तू मैनू खरीद लवे, मैं बिकाऊ माल नहीं, तो सतादारी फिर तीसरे गुण नू वरतदा है। शाम दाम दंड, दंड देओ, टॉर्चर करो, मारो, जेल दे च पाओ, तकलीफ दो, सताओ, भुखा मारो, प्यासा मारो, टॉर्चर करो। ते जो इस ढंग नाल भी काबू ना आवे, भेद पाड़ो, एक पार्टी दी दो दो पार्टी बना दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त उन्हां दे वड्डे भरा पृथ्वी चंद ने गुरु होण दा दावा कर लिया, मैं गुरु हां, यह गुरु नहीं है। मसंदा नू नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, ते शक्ति सारी पिछे जहांगीर दी, भी तू बन, तू वड्डा बिरा है, तू गुरु, ये छोटा सब तो, ये गुरु होने का दावा करी बैठा है। इस तरह पाड़े आ गया बिरा बिरा नू और मुखालफ बनिया पृथ्वी चंद। शायद थोड़े विचों किसी ने दर्शन किए देखा हो, तरन तारण रोड अमृतसर तो जो तरन तारण जाता है, कोई 7-8 मील की दूरी ते झूल ते महल, वो जड़ा अस्थान है पृथ्वी चंद का बनाया है। उत्थे सरोवर भी है, उन्हें दरबार साहब भी बनाया, उत्थे अपनी गुरगद्दी लाई, गुरु होने का दावा किया, मसंदा नू नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता, अमृतसर दे कोई पहुंचे भी ना गुरु अर्जन देव जी तक। हालात ऐसे हुए, दिन भर लंगर नहीं मिलिया गुरु अर्जन देव जी नू, संगतां नू भी ना मिलिया। पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया, शस्त्र लुट के लै गया, वस्त्र लुट के, सब कुछ लै गया। जगत माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत ने, उन्होंने घर टटोलिया मता किधरे कोई चीज लभे ते सतगुरां लई कोई दो प्रशादे बनन। मिट्टी दे भांडे थोड़ा बेसन पिया से, मिट्टी दे तवे ते दो रोटियां बनिया और मिट्टी दे ठेकरे विच ये दो रोटियां गुरु अर्जन देव जी दे अगों रखियां, जारो जार रो पईयां। उत्थे सतगुरां ने एक वाक उच्चारण कीता है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी दर्ज है, कानड़ा महला पंजवां, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात। कोई गल नहीं, धरती ते सोना है, बिस्तरे ले गए हो सारे, भोजन रुखा है, घर दे कुछ नहीं है, पर तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया, धन लुट के लै गया, वस्त्र लुट के लै गया, साजो समान लुट के लै गया,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ।